अनक अनेक अनंता तेरी अनक करहे हर पूजा जे तब ताप है जपे बेअंता तेरे अनेक पड़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत पले जन नानक जी जो भावे हे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडेव न कोई

तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जान ओई अस महला चौथा। तू करता सचियार मेंडा साई, जो तो पावे सोई थी, जो तू देहे सोई हो पाई रहा। सब तेरी तू सब नीत आया, जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाता मन मुखवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माए, तुझ बिन दूजा कोई नाए। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मेर विछड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वरना कोए। तू कर कर विख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होया सा महला पहला। तित सरवड़े पहले निवासा, पानी पावकत ने किया। पंकज मोह पगनी चल, हम देखा तै डूबिया दे। मन एक नचेत समूढ़ मना, हर बिसर तेरे कुण करया रहा। ना हो जती सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पिया। प्रणवत नानक तिनके सरणा, जंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पही प्राप्त मानक देहुरिया। गोबिन मिरन किए त्रिबरिया, अवर काज तेरा कते न काम। मिर साध संगत पज केवर नाम, सरंजाम लाग भवजर तरण कै। जन्म बिरथा जात रंग मै खिराव, जप तप

कभी पर बिनती चौपाई हमरी करो हाथ रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम काबू आप हाथ दे मोहे बचा सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सेख सब करतारा मोर छानी करते करिए सब रण कुआ संघरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन के रहे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवन त्याओ जो बार चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख मारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण कार का त्रास निवरे है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करिहो रच्छा राख लिहो मुहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा उतरा काल पाए शिवजू उतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकर कार का किया तमाशा जवन कार जोगी शब कियो वेद राय ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन कार सब जगत बनायो देव दैत जश्न उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजाजन आव सवारी सबकण को सबगण सुख दियो सतरण को पाल मोहबत कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे के पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक के पीर पछान काट काट के पट पट के जान जब उदकारख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह पारा जब अकारख करत हो कब हूँ तुम मैं मृत देह तर सब हूँ जिते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद रियालम निरंकार निरपकार निरदंब आद अनिल अनाद असंभ

महा मूढ़ कर भेद न जानत, महादेव को कहत सदाशिव, निरंकार का चीनत नह पैव, आप अपनी बुद्ध है जेते, वर्णत पहन पहन तू है तेते, तुमरा लखा न जाए पसारा, तेह बेद सजा प्रथम संसारा, एकाय रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव की पूपा, अंडज जेर से दरकिनी, उत्पुर खान बहर रच दीनी, कहूं पूर राजा वह बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा, सगरी सिरट दिखाए अचंभव, आद जुकाद सुरू स्यंभव, अवरशा मेरी तुम करो, सिख पार असिख संगरो, दोष्ट जिते उठवत पाता, सकल मरेश करो रण खाता, जे अस तुज तव शरणी परे, तिनके दोष्ट दुखत हुए मरे,

राम करी महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मनिमाय सतगुरु मैं पाया सतगुर तै पाया सह सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दों तंगा वो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगेकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सुख मनो वसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा कर ता तेरा सब कुछ है जिस ते सो पावे सदा सिव सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया पादे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुआईया कर शांत सुख मन वसिया जिन इच्छा सा पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुर बिटो जस्तियां वडियाईया कहे नानक सुनो संत हो शब्द रूपियारू साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस किते काल कंठ कुमारिया तुर कर पाया तुर जन को से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद बाजे अनद सुनहो बटभागी हो सग मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सर्व सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पुर सतगुर रहिया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लाके बाजे अनहतूरे मंदानी महला पनमा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचार अमृत नाम ठाकुर का पेओ जिसका सबसे आधार जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उदार एह वस्त तजी नह जाए नित नित रख उरदार तम

परेशान जहां त्रिखा मन तुझे करख है त नानक हर हरि अमृत बरख है भक्त जना के बरतन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास के ओट हर के नाम तुरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हरि अवख साध कमात हर जन के हर नाम निदान

प्रकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभाव करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी नातम रस, ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अंग मोत्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभाप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइए, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखिर। ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल अकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी। श्लोक उर धारै जो अंतर नाम, सर्ब मैं पेखै भगवान। निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानको अपर सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मैं प्रीत निरंजन दर्श। पर त्रे रूप न पेखै नेतर, साध की टहल संत संग हेत। करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को। मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की बाशना मन ते टरे। इंद्री जित पंच दोह ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा परस। वैष्णु सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिशन की माया ते हुए भिन्न। कर्म करत हो वै निह कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बांछै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरा नाम जपावै, नानको वैष्णु परम गत पावै। भगौती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगौती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिशन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावै। सो

जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जून ना आवै, वेद पुराण सिमृत बूझै मूल, सुख मैं जानै स्थूल, चौं वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान, चौं वरना मैं जपै कु नाम, जो जो जपै तिसकी गात होई, सा संग पावै जन कोई, कर किरपान तुरुर तारै पाश प्रेत, मुगद पाथर को तारै, सर्ब रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगा प्रवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सोझी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुग सोक हावै, तैसा हरक तैसा उसोक, सदा नंत नहीं बेयोग, तैसा स्वर्ण तैसी समाटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा मान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताई साई जुगत नानक उपर कहियै जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाऊं, जित जित घर राखै तैसा तिन्नाऊं, आपे करण करावण जोग, प्रभा वै सोई फुन होग, पसरवा पोयन तरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगाश, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल, सलोक उस्तत करें अनेक जान, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहु विधि अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट मन भ्रमै उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी श्रोते, कई कोट आत्म ध्यान धारें, कई कोट कव काव विचारें, कई कोट नवतन नाम त्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट भेगा आत्म निकोर, कई कोट पर दर्व को हिरें, कई कोट पर दुख न करें, कई कोट माया श्रम माहें, कई कोट पर देश परमाहें, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजी रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससिर सूर नखत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समगरी अपने सुतारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख्य किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच, सब ते निरै सबू ते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बहु जोनी फिरै, कई कोट बैठ तीखाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जहां जहां पाणा तहां तहां राखे, नानक सब किश प्रभ के हाथे, कई कोट पहे बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजन ते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन को मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगै सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन को होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत गिनो विस्तार, कई बार पसरो पसार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोट कीने बहु भांत प्रभ ते होए ब्रह्माए समाता कांत, न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के देवदास तिन होवत आत्म प्रगाश, कई कोट तत के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सा सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सह समावै, अपने जन को सा सा संभारे, नानक कोए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहारणै जल थल महील सोय, अष्टपदी करण करावण करनै जोग, जो तिस भावै सोई होग, खिन मै थाप थापण हारा अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार तार रहावे हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वड्याई, नानक सब मैं रहा समाई,
ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਉਧਾਰੇ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੇ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਪਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ਆਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਨਜਾਨਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੈ, ਪਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਾ ਦਿਸ਼ਤਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰੇ ਆਵੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਖਿਰ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ, ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਦਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਖਾਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਪਣੀ ਬਣਤਾ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੈ ਦੇਖ ਬੜਾਈ, ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ, ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਕਬਹੂ ਸੋ ਘਰ ਖਰਾ ਗਸੈ, ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕਾ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ,

राष्ट्रपति टूटी गांडन हार गोपाल सर्ब जिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रवे आपे आप आपन किया कशु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोय तिस बिन नाही तेरे किश काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जो सगल कट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किश तिसका दिया दर्भ है अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै जे को होए बह दातार तिस देन हार जानै गावार जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग नानक सूजन सदा अरोग ज्यों मंदिर को था मैं थमन त्यों गुर का शब्द मने स्थमन ज्यों पखान नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै ज्यों अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन हुए बेगास ज्यों महाउद्यान में मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै तिन संतन की बांछों दूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाई है पुरब लिखे का लिखिया पाई है दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कश करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बसताई तेरे संग लपट रहे रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पात सेती कर जाहे जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन घर पाया ताजब मान ले मन मोल राम नाम हिरदय मैं तोल लाद खेप संतां संग चाल अवर त्याग बिखिया जंजाल धन धन कह सब कोय मुखो जल हर दरगा सोए ए वापार विरला वापार है नानक ता कै सद बलिहार है चरण साध के तुहे तुहे पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान सा सेवा वड भागी पाई है सा संग हर कीर्तन गाई है अनक बिघन ते साधु राख है हर गुण गाय अमृत रस चाख है ओट गही संतां दरियाया सर्ब सुख नानक तेह पाया मृतक को जीवालनहार भूखे को देवत आधार सर्ब निदान जा की दृष्टि माहे पुरब लिखे का लैणा पाए सब किश तिसका वो करने जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल ए करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जा कै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए ते लोए जा कै हिरदय एक होए सच करनी सचता की रहत सच हिरदय सत मुख कहत साची दृश साचा आकार सच वरतै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग केश त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तसै बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख मानु की तू प्रीत त्याग तिस्ते पर नाही किश कोय सर्व निरंतर एको सोए आपे बीना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साध तेरे की चरनी पाऊ नानक मने अनुराओ मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई होगा हरन भरन जा का नेत्र फूर तिसका मंत्र ना जाने होर आनंद रूप मंगल सद जा कै सर्ब थोक सुनिए करता कै राज मैं राज जोग मैं जोगी तब मैं तुपी शरग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगतां सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जा की लीला की मित नाहे सगल देव हारे वगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्या वैसे ते गुण मैं जा को प्रमाए जन्म मरै फिरावै जाए ऊच नीच।

एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूरे हो पूरन सब ठाए नाना विद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कट तिसके सब तिसके ठाऊं जब जब जीवै नानक हर नाउ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे

बिन भजन बिख्या सगली शार, हर हर नाम कमावना नानके तन सार। राष्ट्रपति संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवरु पाप सब मीत बसारो, चरण कमल हृदय उर धारो, करण कारण सुप्रभ सम्राट, दृढ़ कर गौ नाम हर वत। ए धन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मन ते का सराखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस धन को चार कुण टुटतावै सो धन हर सेवा ते पावै, जिस सुख को नित बांचे मीत सो सुख साधु संग परी, जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा पज हर की शरणी, अनु क्यों पावी रोग न जाई, रोग मिटे हर अब कदलाय। सर्व निधान मैं हर नाम निधान, जप नानक दरगह परमान, मन प्रभु दो हर कह नाय, धंध तावते आवे ठाए, ताको बिघन न लागे कोए, जा कह हृदय बसे हर सोई। कल ताती ठंड हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, भवन से पूर्ण हुए आस, भगत पाए आत प्रगाश, तित कर जाय बसे बनासी, कौ नानक काटी जम फासी। तत विचार कह जन साचा, जन मर सो काचो काचा, आवा गवन मिटै प्रभ से, आपते आग शरण गुरदेव, यौ रतन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वीर विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बन चित नानक फल पाए। संग न चालस तेरा तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना, सोत मीत कुटंबर बनता, इनते को तुम कवन सुनाथा, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, अस हस्ती रथ सवारी, झूठा डम झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे न बेगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत ले आने, भगत बिना बड़ू बेस्याणे, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किलबिक जाहे, आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नान गुण गाओ, गुण गाव तरी उतर समैल, बिनस जाए हो मैं बिग फैल, होय अचिंत बसे सुखनाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, छाठ सियाणप सगली मना, सत संग पावे सच तना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगाह जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कौ नानक जाके मस्तक लेख, एको जप एको सलाह, एक सिमर एको मन आहे, किसके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरिया, पूर्ण पूर्ण रहो प्रव्याप, अनेक विस्तार एक ते भय, एक

सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, पर्या तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाई। अष्टपदी जाचक जन जाच प्रवदान कर कृपा देवु हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्मिर श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत भक्त करो प्रभु की नित नीत। एक कोटि को आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार। प्रभु की दृष्ट महासुख होए हरस पावे बिरला कोई। जिन चाखिया से जन त्रवताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सो भर परे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साध कै संग। परे शरण्यान सब त्याग अंतर प्रगाशन दिन लिवलाग। बड़भागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए। सेव की मनशा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होयो दया सेव कीनो सदा निहाल। बंधन काढ़ मुक्त जन पाया जन्म मरण दुख भ्रम गया। ऐश पुनी शरदा सब पूरी रव रहे सत्संग हजूरी। जिसका सत लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये। सो क्यों बिसरै जे काल न भानै। सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया। सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अग्न में राखै गुर प्रसाद को बिरला लख है। सो क्यों बिसरै जे व्यक्ति काढ़ जन्म जन्म का टूटा गंढ। गुरपुरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो ए काम आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अपना नाम जपावो। भगत पाए तरिये संसार बिन भगती तन हो सीशार। सर्व कल्याण सुख निधराम बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुहाओ। नेत्रों पेख दर्श खोए मन बिकसै साध चरण तोए। भगत जन कै मन तन रंग बिरला को पावै संग। एक बस दीजे कर्म आया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्व समाए। प्रभक शांत दीन दयाल भक्त बशल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत परपाल। याद पुर कारण करतार भक्त जना के प्राण आधार। जो जो जपै सोहे प्रणीत भगत पाय लावै मन हीत। हम निर्गुणियार नीच अजान नानक तमरी शरण पुरख भगवान। सर्व कुंठ मुक्त मोक पाए एक निम खर के गुण गाए। अनक राज भोग बड़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत। भली सो करनी सो बातन मंत हिरदय बसे पूर्ण गुरमंत। सार संग प्रभ देह निवास सर्व सुख नानक परगास। श्लोक सर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप। अपन किया नानक आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकारे कृष्ण दृष्टिता पापन तब कहते हुता। जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर सुख कौ किसे व्यापत। जब अपने

चित्र गुप्त खुशबू शतलेखा जगन्नाथ निरंजने गोचरे गाधे। तब कौन छुट्टे कौन बंधन बांधे, अपने आप आपिय चरजा, नानक अपन रूप आप ही उपरजा। जहाँ निर्मल पुरख पुरख पत होता, तहाँ बिन मैल कहो क्या तोता। जहाँ निरंजन निरंकार निर्वाण, तहाँ कौन को मान कौन अभिमान। जहाँ स्वरूप केवल जगदीश, तहाँ शल शिद्र लत को कीस। जहाँ जो स्वरूपी जो संग समावै, तहाँ किसै भूख कवन तृप्तावै। करण करावन करण हार, नानक करते का ना शुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुध पाई। जहाँ सर्व कला आपे प्रवीण, तहाँ वीर कतेब कहाँ कुचीन। जब अपने आप आप उतारे, तो शगन अपशगन कहाँ विचार है। जहाँ अपने ऊंचे अपने आप नीरा, तहाँ कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्म आदु, नानक अपनी गत जानो आप। जहाँ अशाल अशीद भीत समाया, वहाँ किसे व्याप्त माया। आपस को आपे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश। जहाँ एक एक एक भगवंता, तहाँ कौन चिंत किस लागे चिंता। जहाँ अपने आप या पतियारा, तहाँ कौन कथा है कौन सुनने हारा। भव भे अंत ते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुँचा। जहाँ आप रचि ऊपर पंची अकार, ते गुण में कीनो विस्तार। पाप पुन तहाँ पई कहावत, को नरक को सुर्ग मचावत। आल जाल माया जंजाल, हम मैं भरम पै पार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की बखियान। अपन खेल आप कर देख है, खेल संकुच है तो नानक एक है। जहाँ अभिगत भगत आप, जहाँ पसरे पासार संत प्रताप। दो पाका या पै धनी, उनकी शोभा उन्नो बनी। या पै कौतक करे आनंद चोज, या पै रस भोगन रजोग। जिस भावै तिस अपन नाय लावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेशुमार यथा या गणत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। सलोक जी जंत के ठाकुरा, अपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया, दूजा कह दृष्टा। राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हार। या पै एक या विस्तार, जंत भाव सृष्टि उपाय। अपने भाणे लय समाये, तुम ते भिन्न नहीं किश होए। अपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभ जी वा बजाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत्कविता, नानक सगल सृष्ट का जीता। जी जंतर सब ता कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस रख है तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस ता जबर कहाँ को जाए, सबसे रेख निरंजन राय। जी की जुगत जा कै सभात, अंतर बाहर जनो साथ। गुण निधान बेअंत पार, नानक दास दा बलिहार। पूर्ण पूर रहे दयाल, सभी उपर होवत कृपाल। अपने कर्तव जाने आप, अंतर जा मिरयो ब्याप। प्रतपाल जीअन बो भांत, जो जो रचियो सो तिस ध्यांत। जिस भावै तिस लय मलाई, भगत करें हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक इक जानिया। जन लागा हर एक कै नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक को सेवा बण आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। इस ते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार। बंधन तोर भय निर्वैर, अंदर पूजा गुरु के पैरे। लोक सुखिए पर लोक सोहेले, नानक हर प्रभा पै मिले। साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो पर परमानंद। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ देखा करो उधार। अमृत बचन हर के गुण गावो, प्राण तरण का है सुहाओ। आठ पैर प्रपे खो नेरा, मिटे अज्ञान बिनसै अंधीरा। सुनियो उपदेश हृदय बसावो, मन चे नानक फल पावो। हालत पलत दोए लेह सवार, राम नाम मंत्र उतार। पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसे ते साच परीखिया। मंत्र नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए। सच वपार करो वपारी, दरगाह निभ है केव तुम्हारी। एक काटे कर खो मन माही, नानक भावर न आवै जाहे। तिस्ते दूर कहाँ को जाए, उबरे राखन हार त्याए। निरपव जपै सगल पव मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै। जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख, नाम जपत मन होवर सुख। चिंता जाय मिटै अहंकार, तिस जन को कोई ना पहुँचन हार। सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखित उदरत सृष्ट। चरण कमल जाकी अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक परवान, यंत्र जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सोत निहाल, ताके

ਸੱਚ ਨਾਮ ਸਮਾਈ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹਣਾ ਸਭ ਬੋਲਣ ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ। ਮਨ ਮੋਕਾਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਹਮੇ ਮਮਤਾਵਾਦ। ਜਿਨ ਸਲਾਹਣ ਸੇ ਮਰੇ ਖਬ ਜਾਵੇ ਸਭ ਅਪਵਾਦ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁ ਉਪਰੇ ਜਾ ਪਰ ਹਰ ਪਰਮਾਨਾਦ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਮਨ ਹਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤ ਹਰ ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਾਰੀ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰੰਜਣ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਸਹਿ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਕਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜਿਨੂੰ ਲਵੇ ਲਾਏ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੋ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਨਿਰੰਜਣਾ। ਤੂੰ ਹੈ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੇ ਰੋਗ ਹੈ ਪਰਮ ਭੂਲੇ ਮਨ ਮੁਖ ਦੁਰਜਣਾ। ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਗਵਾਏ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਸੱਜਣਾ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਰਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉਂ ਗੁਰਮਤਾ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਜਦ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰਸਬਾਸ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੜੀਐ। ਦੁਰ ਜੇ ਵਡ ਹੋਏ ਸੋ ਆਖੀਏ ਤੋ ਜੇ ਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਪੜੀਐ। ਤੂੰ ਗੜ ਗੜ ਇੱਕ ਵਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦਾ ਕਸਮਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋ ਸੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਕਰੀਏ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮ ਕਾ ਅਠੇ ਪੈਰ ਲਗਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਸਨ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨੇ ਅੰਦਰ ਪੀਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਉ ਬੋਲਣ ਤੇਵੇ ਸੁਹਨ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ ਲਾਈ ਪੀਤ ਪ੍ਰਨ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਾਹੀ। ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੁ ਸੱਚੇ ਭਲਾ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਈ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਤਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਥਿਆਈ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਛਡਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ ਅੱਖੇ ਤਾਰ ਲਗਨ। ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਸੱਜਣ ਮੇਲਿਆ ਜਾਨਾ ਨੂੰ ਸੋ ਸਵਨ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਜਿਨੋਂ ਦਿਆ ਸਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। ਨਿਰਵੈਰਾ ਨਾਲ ਵੈ ਨਾਰਾ ਨਿਰਵੈਰਾ ਨਾਲ ਜੇ ਵੈ ਚਲਾਏ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਟਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਕੋ ਇੱਛਦਾ ਤੇ ਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਜਿਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਜਾ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਵੱਡ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਸਾਹ ਪਾਵੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸੋ ਸਹਿ ਮਨ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਕੋ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਮੂੜ ਜਾਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸੋ ਗੁਣ ਰਵੇ ਗੁਣ ਆਵ ਖਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਹੈ ਬੋ ਸਤ ਸਮਾਣੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਸਤ ਨਿਰੰਜਣ ਅਮਰ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਤੇ ਲੱਥਾ ਹਮੇ ਪਾਰ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਸੰਜਨਾ ਜੈਕਾਰ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤਿਸ ਨੂੰ ਫਿਟ ਫਿਟ ਕਹੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਗਾਵੰਦਾ ਜਿਨੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਸਿਜਣਹਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਆਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਜਨ ਤੋ ਪਾਇਨ ਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇਹ ਗਰਾਸ। ਸਭ ਆਪੇ ਆ ਵਰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੋਂ ਸਭ ਕਿਲਵੇ ਕੱਟੇ ਤਾਸ ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਵੇ।
जो तुद सच सलाह दे तिन जम ने कंकर नहीं डावे तिन के मुख दर उजल है जिन हरदे सच्चा पावे कुड़ियार पिछा सटियन कुड़ हिरदे कवट मह दो पावे मोह काले कुड़ियारिया कुड़ियार कुड़ोहे जावे इसलोक महला चौथा सतगुर तरती तरम है तिस विच जे हा को बीजै ते हा फल पाए गुरसिखी अमृत बीजिया तिना अमृत फल हर पाए ओना हलत पलत मुख उजलै ओ हर दरगे सच्ची पैन आए एक ना अंदर को एक तरह अंदर खोट नित खोट कमावे ओ जेहा बीजे ते हा फल खाए एक ना अंदर खोट नित खोट कमावे ओ जेहा बीजे ते हा फल खाए जा सतगुर सराफ नदर कर देख स्वादगीर सब उगड़े आए ओ जेहा चितवे नित ते हा पाए ना ओ तेहो जेह देव जाए नानक दुही श्री खसम आपे वरते नित कर कर देखे चलत सबाए महला चौथा एक मन एक वरतदा जित लगे सो थाए पाए कोई गल्ला कड़े करेरिया जे घर बात होवे साई खाए बिन सतगुर सोजी ना पवे हंकार न विच हो जाए हंकारिया नो दुख पुख है हद तड़े कर कर मंगाए कूट ठगी गुजी ना रहे मलम्मा पा लै जाए जिस हो पूर्व लिखिया ते सगुमले प्रवाए जो लोहा पारस पेटी है मिल संगत स्वर्ण होए जाए जन नानक को प्रभ तू तनी जो पावे तिवें चलाए पौड़ी जिना हृदय सेवे आतन आ मलाए गुण की सां तिन सो करी सब औगण शब जलाए औगण विकण परड़ी औगण विगड़ परणी पलरी जे देस सुचे पाए औगण विकण पलरी जे देस सुचे पाए बलहारी गोरे अपने जिन औगण मेठ गुण परटी आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुखा लाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो अंदन हर हर नाम ते आवै हर हर नाम जपत सुख संयम हर हर नाम जपत सुच संयम हर नाम ही तृप्त आवै हर नाम तान हर नाम दिबान हर नामो राख करावे जो चित लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पाए जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओ वेला हाथ न आवे ओ अपना बीजिया आपे खावे नरक घोर मुंह काले खड़िया जो तस्कर पाए गलावे फिर सतगुरु की सरणी पवे ता उबरे जा हर नाम ते आवे हर बात आग सुनाए नानक हर करते एवें पावे महला चौथा पूरे गुर का हुक्म न मने ओ मन वह ज्ञान मुठा बिख माया उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बूझे अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया ओ गल फरोसी करे बहुत तेरी ओदा बोलिया किसे न पाया ओ कर कर हंडाए ज्यो रन दुहागण उस नाल मोह जोड़े ओ भी लक्षण लाया गुरम होए सो अल्प तो वरते उसका पास सड गुर पास बह जाया जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो लाह मोह सब गवाया पहला आगम निगम नानक आग सुनाए पूरे गुर का बचन उपर आया सतगुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हाथ न आया पौड़ी सच सच्चा सबदों वड्डा है सो लय जिस सतगुर टिके जो से सो सतगुर जे सच त्याइंदा सा सतगुर सच्चा इको सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके जे बिन सतगुर सेवे सो आप गणाइंदे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मुँह फिके ओ बोले किसे ना भावनी
मोकाले सतगुर ते चुके श्लोक महला चौथा। हर प्रभ का सब खेत है, हर आप करसाणी लाया, गुरमुख बख्श जमायन, मन मुखी मोल गवाया। सब को बीजे अपने भले नो, हर पावे सो खेत जमाया, गुरसिखी हर अमृत बीजिया, हर अमृत नाम फल अमृत पाया। जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करते मार कढाया, करसाणी जमी पाहो कर, हर बोल बख्श जमाया। तिनका काड़ा देसा सब लाहिन, जिने सतगुर पुर ते आया, जन नानक नाम अराध्या आप तरिया, सब जग तराया। श्लोक महला चौथा। सारा दिन लालच अटिया, मनमुख हो रे गल्ला, राती उगे दबिया, नवे सोच सब टिला। मनमुखा दे सिर जोरा अमर है, ने देवे पला, जोरा दा आख्या पुरख मां दे, से आप वे तमेद खला। काम व्यापे कुसुदा, काम व्यापे कुसुद नर, से जोरा पुछ चला। सतगुर के आख्या जो चले, सो सत पुरख पल पला, जोरा पुरख सब आप उपायन, हर खेल सब खिला। सब तेरी बंत बनावनी, नानक फल फला पौड़ी, तू वे परवाह अथा है, अतुल क्यों तुली है, से बड़पागी जे तुद त्याद, संतन सतगुर मिली है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बड़िए, सतगुर की रीसे होर कच पिच बोलते, से कुड़ियार कुड़े चढ़ पड़ी है। ओना अंदर मुख होर है, बेख माया नो चक मरदे कड़िए। श्लोक महला चौथा। सतगुर की सेवा निर्मले, निर्मल जन हो सु सेवा काल, जिन्ना अंदर कपट वकार झूठ, ओ आपे सच्चे वक कढे जजमाले। सच्यार सिख बै सतगुर पास कालन, कुरियार न लभनी किते थाए पाले। जिन्ना सतगुर का आखिया सुखावे नाही, तिन्ना मोह पलेरे फिरे दे गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं अर केरी, सिख चरक वराइन मन मोबे ताले। सतगुरु मिले सुहा पड़ा मन थाए राखे, ओ आवरते अपनी वथ नाले। जन नानक गुर मेल सुख देवे, एक आपे वक कढे ठगवाले। महला चौथा। जिन अंदर नाम निदान हर तिनके काज दे आंदे रास, तिन चौकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंकर बैठा पाग। जां करता वल ता सब को वल, सब दर्शन दे करे सबास। साहो सतगुरु पा साहो सा, साहो पातशाह सब हर का किया, हर जन को आए करे रह राज। गुरपुरे की वड्डी वड्याई, हर वड्डा सेव तुल सो पाया, गुरपुरे दान दिया हर नेचल, नित बख्शे चढ़े सवाया। कोई निंदक वड्याई देख ना सके, सो करते आप जाया। जन नानक गुण बोले करते के, भगता नो सदा रखदा आया पौड़ी। तू साहब अगम दयाल है, वड़दाता दाना, तुरजे वडमहर को दिस ना, वे तू सुकड़ मेरे मन पाणा। मोक डम दिस आवंदा, सब चलन हारा आमन जाना। जो दिन सच्चे होर चित लाएं दे, से कुड़ियार कुड़ा तिन माणा। नानक सच त्याहे तू, बिन सच है पाच बाज मुए अजाना। श्लोक महला चौथा। अगों दे सद पाओ न दिसै, पिछों दे आख्या काम न आवे, आद विच फिरे मन मोह विचारा, गली गों सो पावे। जिस अंदर पीत नहीं सतगुरु की, सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे। जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पावन नदर ही आवे। ता प्यों पीवे शब्द गुर केरा, सब काड़ा देसा परम जगावे। सदा आनंद रहे दिन राती, जड नानक अंदन हर गुण गावे। महला चौथा। गुर सत गुर का जो सिख अखाए, सो पलके उठ हर नाम त्यावे,
उदम करे पल के पर भाति स्नान करे अमृत सर डावे अवदेश गुरु हर हर जप जापे सब किलवे पाप दोख लै जावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बहदया उठदया हर नाम त्यावे जो सास ग्रास त्याहे मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे जिनू दयाल हो मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु अवदेश सुनावे जा नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरा नाम जपावे पौड़ी जो तुद सच त्यादे से विले थोड़े जो मन चेते करा दे तिरकी बद खाए खंस असंख करोड़े जो मन चेते करा दे तिनकी बरगद खाए असंख करोड़े तुद नो सब त्यादी से थाए पै जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मुए मरज मैं कोड़े ओ हाजर मिठा बोल दे बार विस कड्डे मुख कोले मन खोटे दे विछोड़े श्लोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खदोलड़ा तिन वे मुख वे मुखे नो पाया पास न दे कोई बैन जगत में गोपड़ सगवी मल आए मन मोह आया पराई जो निंदा चुगली नो वे मोह करके भेजिया ओथे भी मुंह काला दोहां वे मुखां दा कराया ताड़ सुनिया सब जगत विच भाई वे मुख सने नफले पौंदी पौंदी फाह होके उठ कर आया अगे संगती कुड़मी वे मुख रणा ना मिले ता वोटी भतीजी फिर आन कर पाया हलत पलत दोवें गए नित भूखा कुके त्याया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बै आप कराया जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो साचे मार पचाया ए अखर तिन आख्या जिन जग सब उपाया महला चौथा साहेब जिसका नंगा भुखा होवे साहेब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों रज खाए जे साहेब के कर वात होवे सो नफरे हथा बहणौंदी कित्थों पाए जिसकी सेवा कीती फिर लेखा मंगी है सा सेवा की होई नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की फिर लेखा मंगे न कोई पौड़ी नानक विचारे संजन चर वेट का हम दे भगत मुख ते बोल दे से वचन हम दे पट बहारा जाप दे सब लोग सुन हम दे सुख न पाए न मुग्ध दर्शन नाल कहम दे ओ लोचनो न गुण नो अहंकार सुनन दे ओ विचारे क्या करे जा भाग तुर मंद जो मारे तिन परावरा पारवन से कहे न संद वैर करे निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंद जो जो संत सरा पिया से फिरे पवंद पेंड मडाऊ कटिया तिस डाल सुकंद सलोक महला चौथा अंतर हर गुर त्यादा वड्डी वड्याई तो दिती पूरे सतगुरु कटे नाही एक तिल किसे दी कटाई सच साहब सतगुरु के बल है ता चाकचा मरे सब लुकाई निंदका के मोकाले करे हर करते आप वधाई ज्यों ज्यों निंदक निंदा करे नित नित चढ़े सवाई जन नानक हारे अरादिया तिन पैरी आन सब पाई महला चौथा सतगुरु से ती गंजे रखे हलत पल सत क्या गया नित चहिया पाए चुगू सुटे चखदा चखदा अड़ पिया नितो पा माया तन कारण अगला तन भी उठ गया ओ ओ क्या ओ खटे क्या वो खावे अंदर सहसा दुख पिया निर्वैरे नाल जे वैर चाहे सब पाव जते का तिन सिर लिया ओ अगे पिछे ढोई नाही जैसे अंदर दिंदा वो अंब पिया जे सोने नो हाथ पावे जे सोने नो हाथ पाए ता खेहू से तीर अड़ गया जे गुर की सड़नी फिर आवे ता पिछले औगण बख्श लिया जन नानक अन दिन नाम ते आया हर सिमरत गिल वे पाप गया पौड़ी तू ऐ सचा सच तू शब्द उपर तू दे बाण
ਜੋ ਤੁਧ ਸੱਚ ਧਿਆਇਂਦੇ ਸੱਚ ਸੇਵਣ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਸੇ ਭਗਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਲਾਇਆ ਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਾਨ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਦੇ ਬਿਨ ਸਾ ਦਿਨ ਸਾਧ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੁਰ ਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਜੇ ਬੋਬੇ ਲੜਨੋ ਬੋ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲਣ ਕਰਤਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਢੋਈ ਨਾ ਲੈਣ ਵੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਬੇ ਫਿਟਕੇ ਸੇ ਫਿਟੇ ਗੁਰ ਅੰਦਗਦ ਕੀਤੇ ਕੁੜਿਆਰੇ ਗੁਰ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਟਿਕਿਆ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕ ਦੁਰ ਸਭ ਤਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਿਸ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰੇ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਪੁੱਤ ਤਨ ਲਖਮੇ ਖੜ ਮੇਲੇ ਹਰ ਸਿਜ ਨਿਸਤਾਰੇ ਜੋ ਇਸੇ ਸੁਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਪੁੱਤ ਤਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਖੜ ਮੇਲੇ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਾਵਨ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਤਾਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਤ ਲਲਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਧੂੜ ਤਿੰਨ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਤ ਪਿਆਰੇ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜਗਤ ਬਿਆ ਪਿਆਣ ਤਿੰਨ ਕੋ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਡਰੀਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸ ਆਪਦੂ ਕੀਚੈ ਸਭ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਧਾਏ ਦੇਖੋ ਪਾਈਏ ਅਖਾੜਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਕਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਸਭ ਆਣ ਨਿਭਾਏ ਆਪਣਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਕਰੇ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਭਗਤ ਨਿਤ ਆਖ ਕਰਾਏ ਆਪ ਕਰਾਏ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੀ ਵਸਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੂ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਹਰ ਆਮੁਖੋਂ ਕਢਾਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੇ ਉਜਲੇ ਕਰੇ ਹਰ ਆਪ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਬਦ ਕਰਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੈ ਸਚ ਸਾ ਹਮਾਰੇ ਸਚ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਦੜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਵਣਜਾਰੇ ਥਾਰੇ ਸਚ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਦੜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਵਣਜਾਰੇ ਥਾਰੇ ਸਭ ਸੇਵੇ ਸਭ ਨੰਜਲੈ ਗੁਰ ਕਥੇ ਨਰਾਰੇ ਸੇਵਕ ਪਾਏ ਸੇ ਜਲ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਤੂੰ ਚ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆਲਾਖੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਾਰੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭਲਾ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੋ ਜਾੜੀ ਪੁਕਾਰੇ ਖਲਾ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੋ ਵੱਜੇ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾ ਉਸਦਾ ਸਭ ਗਿਆ ਨਿਤ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ ਹੁੰਦੀ ਪਰਾਈ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋਕ ਤਿਹਾ ਖਾਏ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੀਜੈ ਤਿਹਾ ਕੋ ਖਾਏ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੇਸ ਖਾਧੀ ਤਰਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਨਿਆਉ ਸੱਚ ਕਰਤੇ ਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਏ ਤਨ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹਰ ਦਰ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਸੁਣਾਏ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦੇ ਪਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਵਿਛੜੈ ਤਿੰਨ ਕੋ ਦਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਾਇ ਮਿਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਮੁੱਤ ਪਿੱਕੈ ਥੁਕ ਥੁਕ ਮੋਹ ਪਾਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਟਕੈ ਸੇ ਸਭ ਜਗਤ ਫਿਟਕੈ ਨਿਤ ਪੰਬਲ ਭੂਸੇ ਖਾਈ ਜਿਨ ਗੁਰਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇ ਲੈਂਦੇ ਢਾਹ ਫਰਾਈ ਤਿੰਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਨਿਤ ਭੁੱਖਾਂ ਭੂਖ ਕੁਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਕੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਨਿਤ ਹੌਲੇ ਹੌਲ ਮਰਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਨੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਉ ਨਾਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰੇ ਤਿੰਨ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਦੀ
सब पात गवाई, ओ अगे कुश्ती गुर कै फिटकै, जे उस मिले तिस कुष्ठ उठाई, हर तिन का दर्शन न करो, जो गुरु दूजे पाए चित लाई, तुर करते आप लिख पाया, ते नाल क्यों चारा नाई, जा नानक नाम रा तो तिस अपड़ को न सिखाई, नावे की वड्याई वड्डी है, निस्वाई चढ़े चढ़ाई महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठकिया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिस गुर को जगत निव्या सा पैरी पया, सब वर्त्या लोई तिस गुर को, तिस को खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक चढ़ तरिया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, अपड़ को न सकोई, जन नानक हर करते आप बैठ गया, आप ही पैज रखे प्रभ सोई पौड़ी, काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरम सौदा जो करे हर वस्त संभाले, नाम दान हर वन जिये हीरे परवाले, विण काया जे होर थे तन खोज दे से मूड बताले, से उजड़ परम पवाई है जो झाड़ मिग पाले, श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा होए होए रोया, ओ हलत पल सब गवाया, लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बल्द कर नित पलके पुट जोया, ओ वेखे सुने नित सब किस कि दे दो किस गुजा ना होया, जैसा बीजे सो लुणे जिहा पुरब किने बोया, जे कृपा करे प्रभ अपनी ते सतगुर के चरण धोया, गुर सतगुर पिछे तर गया ज्यों लोवाकार संग होया, जन नानक नाम तिहाए तो जप हरा नाम सुख होया, महला चौथा, वड़पागियां सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाये पौड़ी, ए शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गोहज रतन विच लोकरे कोई गुरमुख सेवक कड्डे खोज खोत, सब आत्म राम पछाणिया ता एक रव्या इको ओत पोत, एक देखिया एक मन्या इको सुनिया सरवण सरोत, जन नानक नाम सला तू सच सच्चे ते सेवा तेरी होत, श्लोक महला चौथा, सब रस तिन के हृदय है जिन हर वस्या मन माए, ते मुख उजले तिन को सब देखन जाए, जिन निर्भो नाम ते आया तिन को पो कोई नाए, हर उत्तम तिनी सरेविया जिन को तू लिखिया आए, ते हर दरगे पहनाई है जिन हर बूठा मन माए, वो आप तरे सब टाम स्यों तिन पिछे सब जग छाए, जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वे हम जिवाए, महला चौथा, सा तरती पई हरिया बली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत पै हरियावल है जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए, तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जरनी, जिन गुरु जनिया माए तन तन गुरु जिन नाम राधिया, आप तरिया जिन डिठा तिन लै छाए, हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक तोवे पाए पौड़ी, सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उतारिया, सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया, जन डिठा पूरा सतगुरु तम अंदरों मन सदारिया, बलहारी गुरे आपने सदा सा कुमवारिया, गुरमह जिता मन मुख हारिया,
गुरमुख जिता मन मुख हारिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार जो सासमारी सतगुरु दी पार बख्श रहमत हुई है। अमृत वेले सज दीवान दियां हासियां भरियां ने। नेतनेम सार जो सहज पाठ राम ने बाणी दे पाठ श्रवण कीते ने। गुरु कृपा करे सब नूं चढ़दियां कला बख्शन। समा है आसकी वार दे कीर्तन दा। भाई सपाई गुरदयाल सिंह जी उन्हां दा जत्था आप जी सेवा विच हाजर होए ने जी आयां नूं दास धन्नवाद करदा इन्हां दा। सो आओ इन्हां पासों श्रवण करिए आसकी वार दे कीर्तन। अज तीन अखंड पाठ साहिब की सेवा आरंभ होनी है। ऐतवार नूं भोग पैणगे। परिवार वालों बेनती तीन दिन दर्शन देने। सो श्रवण करिए आसकी वार दे कीर्तन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

नाहि, अमृत शाड बिखे बिखाय, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई।

ज्ञानी न जेवा जेवा वे रूप करे शिंगार, उचे कुके वा दगा वे जो दगा विचार। मूर्ख पंडित हिकमत जित संजी कर पिया, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार।

पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूज सबगल समादं मग झूठ विपुखण सारं त्रिपाल त्याल विचार गल माला तिलक ललाटं दो धोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्म कर्म सब होकर नीचो कर्म।

0: छोड़ी ले पखंडा, नाम ले जाए त्रंदा महला पहला।
1: मानस खानी करी निवाज श्री गायन तन गुप्ता, तिन कर ब्राह्मण पूरे नाज, उन पिया भी हुई साथ। कुड़ी रास कुड़ा व्यापार, कुड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म गड़े रदूर, नानक कुड़ रहा भरपूर। मत्थे टिक्का तेड़ तो तिक खाई, अत फिर जगत कसाई, रवे प्रमाण मिले ताले पूजे प्राण। अपाख्या का कुट्टा बकरा खाना, चुंक ऊपर किसी ने जाना,

अड़सठ तीर्थ जी नहावै उतरे नाही मैल जिन पट निरपार गुरदेव परे संसार तिन्नेहु लगा रब सेती देखणे विचार रंग सिरंग रो विच पिकर जाए परवा नाही किसे केरी बाय।

तिन की संगत परम निदान। हर वर पाया हर वर जिन पाया धन नारी, हर स्यों राती शब्द विचारी, आप तरै संगत कुल तारै, सतगुर सेव तत् विचारै, हमरी जात पात सच नाउ, कर्म धर्म संजम सत भाऊ,

जेथिए प्यारे पाइये नाउ मजीठ रंगण वाला जे रंगे साहिब ऐसा रंगना डीठ जिनके चोड़े रतड़े प्यारे कंत तना के पास तोड़ तना की जे मिले जी कहो नानक की। फिर अगली पंक्ति आपे साजे एक नू वाहिगुरु ने आप साजिया एक एक दी जमीन उन्हें आप वही आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामण कंत है पावे आपे ही रावे। एक ते कामण एक जीव स्त्री होगी तो दूजी दूजी सिर्फ अंकार चुरी फिर दी। तो यो गल बाबा जी ने थी कि जो तिन किया सो सच थिया अमृत नाम सतगुर दिया। अमृत रूपी नाम किन्ने दिता गुरु ने दिता अमृत नाम सतगुर दिया हिरदय नाम जिन्हां दे हिरदे विच की आ गया रब दा ना आ गया। अच्छा अगली पंक्ति बड़ी कीमती ना ही मन भंग भंग दा अर्थ की है एक तो भंग है जी निहंग सिंह छकते ने देखो इस भंग तो अपने बच्चों बचा के रखो मेरी बेनती है सारे बच्चों बचा के रखो हूँ तो इतने जेडे इतों के बोरन बच्चे ने उन्होंने भी इस कमे ला दिता ठीक है जो निहंग सिंह पीते ने तो मैं उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहता पर कम से कम जे छोटे छोटे बच्चे इधर न तुर पे ये चीज़ नुकसानदायक है चंगी नहीं है। गुरमत ने कित नहीं कहा तुम भंग पीनी है पौ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत बाबा जी ने आख्या तेरा भै ही रब जी मेरा भंग है इस करके ठीक है। ये बारे कई दलील कई दलीलबाजिया चल जा ने भी समय की लड़ सी उन्होंने समय के जो डॉक्टर नहीं सन जो फौजा लड़द सन वह एक वखरा विशा है वो बारे डिस्कस हो सकती है पर जोड़ा एक बच्चा 15 साल का 18 साल का जे वह भंग रगड़ रगड़ के पी रहा तो सोच समझ की लड़ है विचारन की लड़ है बचा लो अपने बच्चे बचाए जाते फिर गोलियां पाई जाते नहीं थे टैनल दियां गोलियां विच सुट के रगड़ के कुछ होर ता कि नशा वध होवे। हाँ जदों कि कोई खैर गुरु कृपा करे बहुता नहीं आपां इहदे बारे बोलना। इत्थे भंग का मतलब हुंदा जी तोट इत्थे भंग का अर्थ की है तोट। हुण बाबा जी ने कहा हिरदय नाम जिहदे हिरदे विच वाहिगुरु का नाम आण के टिक गया ना ही मन भंग मन दे नन्ने नूं लगी सिहारी उहदे मन दे विच कोई तोट नहीं आउंदी। साचे साहिबा क्या ना ही घर घर तां तेरा सब कुछ है उहनूं तोट ही कोई नहीं जी कोई तोट नहीं उह इदां ही कहिंदा जी चढ़दी कला उहने सदा की कहना चढ़दी कला ते जिहदे हिरदे विच नाम नहीं है उहदे कोल सब कुछ भी हो गए तो उन्हें कहना मर गए लुटे गए उहदे इहो ही शब्द होंदे हाए जी की करिए तबाह हो गए बस क्योंकि मन विच तोट है ना मन जिवें आपां वचन पढ़दे नित जग तोटा संसार नित ही तोट है कमी कमी है

सतनाम श्री वाहिगुरु जी। गुरपूरे चरणी लाया, हर संग सहाई पाया। जह जाइए तह सहले, कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सुभाई, मन चिंदे सगले फल पावो। जी कै संग सहाई, सो कहो टल गुरसेवी है। एन सह सुभाए, दर्शन पर स्या गुरु कै, जन्म मरण दो जाए। वाहिगुरु साहब जी जैसी मल्ला चौथा, कर पहला चौप दे क्यो अंकार। सतगुर प्रसाद, मेरे हीरे रतनाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जन्म चलम कह किल वेख दुख उतरे, गुर नाम दी हो रिन लाथा। मेरे हीरे रतनाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा। जन्म जन्म कह किल वेख दुख उतरे, गुर नाम दी हो रिन लाथा। मेरे मन पज राम नाम सब अर्था, गुरपुरे हर नाम दड़ाया। बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ, बिन गुर मूड पै है मन मुख। ते मोह माया नित फाथा, तिन साधु चरण सेवे कबहू, तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवै, तिन सफल्यो जन्म सनाथा। मोको की जय दास दादा, सिनको अर दया तार जगन्नाथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुरे अंचल दी जाय, जन नानक चले मलंथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुरे अंचल दी जाय, जन नानक चले मलंथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। क्या ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ता, जुनी सहभंगुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, हैपी सच नान गोसी पी सच। सोचाए सोचना विजय, सोचे लखवार। चुपै चुपना विजय, लाए रहा लिवतार। भुख्या भुगना उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सैस स्याणपन लाख होए, ता एक न चले नाल। के विचारा होइए कै कूड़े टुटे पाल। कुमर जाए चरणा नान लिखिया नाल। हुक्मे होना कार हुक्म न कहा जाए, हुक्मे होण जी हुक्म मिले वड्याई। हुक्मे ओ तुम नीच कुमे ले दो सो पाई है, एक ना हुक्म बख्शी कुमे सदा पवाई है। हुक्मे अंदर साहब को बार कुम ना कोय, नानक हुक्मे जे बुझेता हो मैं कहे न कोय। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को ताजन निशान। गावे को गुण वड्याईया चार, गावे को विद्या वेखम विचार। गावे को साई कीर्तन गे, गावे को जीले फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे आदरा दूर। कतरा कत आवे तोट, कत कत कथी गोठी गोट गोड। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जगंतर खाही खाए। हुक्मे चलाए राव, नानक विसे वे परवाह। साचा साहब साई ना पाख्या पाओ अपार। आख मंग दे दे दात करे दातार। फेर के अगे रखी है जदे से दरबार, मुंह का बोलन बोली है जे सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच न उड़ियाई विचार, करमे आवे कपड़ा नदी मोत वार। नानके वह जानी सब आपे सिचियार। था पिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सो जिन से व्यतन पाया। मान नान गावे गुणी निदान, गावे सुनिम रखिए पाओ। दुपरा सुकर लै जाए, गुरम नाद गुरम वेद गुरम रिया समाई। गोरी सिर गुर गोर वर्मा, गुर पार्वती माई। जेहो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुराय कदे बजाई सबन।

हिंजाता भगवती रहत जोगता जोगी कहत मुक्ता तपसीता पैराता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी दास राता भगत नवे प्रकारा पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्थ धर्माता एको शब्दी बहु रूप अवतूता कापड़ी कौते जागुता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती आ परसा एक लूख न देवे दरसा एक मन ही ज्ञाता काट न कनी काया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उगतो पावा त्यागी शरण पावा नानक गुर चरण पराता। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग मेला पहला घर तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया तेरा अंत ना पाया सुरग मछ पया जियो हों वार ने कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ तुद संसार उपाया सिरे सिर तंदे लाया वेखे कीता अपना कर कुदरत पासा टाल जियो प्रगट पहारे जापदा सब नामे नो प्रतापदा सतगुर बाज न पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर को बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नर मुंजन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानी जिथे एको नाम वखाणिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो जगत परम पलाया आपो तो दुखवाया परताप लगा दोहागनी भाग जना कह नाही जियो दोहागनी क्या निशानिया कसमो कुथियां फेरे निमाणिया मैले वेस ते ना कामणी दुखी रहण विहाए जियो सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्ब लिखिया फल पाया नादर करके अपनी आपे लै मिलाए जियो हुक्म जिन्ना नो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सहियां से सुहागनी जिन शह प्यार जियो।

कर पले जिनी हर जस लेखा से चन सुहावे जो हर मार्ग चले हां बल तिन संग पिछण जियो। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सासों किन माए उदारे किल बेकाट होया मन निर्मल मिट गए आमन जाना जियो। द कर जोड़ एक बिनो करी जे कर कृपा डूबता पत्थर लीजे नानक प्रभ पे कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जियो। माज महला पंजवा अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनवा सतगुर कर दर्शन पाए जियो। सुख पया

पेटे संग साध संतन के सदा जपो दया लाजिया। प्रभु अपना सास सुमारियो ए मत गुरु शब्द मन तारियो। तुमरी कृपा ते हो प्रगासा सर्व में अपत पाला जियो। सत सत सत प्रभु सोई सदा सदा सद आपे होई। चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे देख नानक पे निहला जियो। माज मल्ला पंजमा हुक्मे बरसन लागे मेहा। साजन संत मिले नाम जपया। शीतल सांस सुख पाया।

सब पाए, पुन्यास करे किन पितर हर हर हरे गुण जापे जिया। माज महला पंचमा आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावो गुण अगमे अपारे, गाव सुनत सबे ही मुगते, सोते आइए जिन हम किए जियो। जन्म जन्म के किल बिख जावे, मन चिंदे से ही फल पावे, सिमर साहिब सो सच स्वामी, रिजक सब सुख दिए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाइये, सब बिन से हर त्याइये, जिन से व्यासो पर ग्रामी का सगले थिए जियो। आए पिया तेरी शरण आई, जो पावे तिम लियो मिलाई, कर कृपा पा भक्ति लाओ, सच नानक अमृत पिए जियो। माज महला पंचमा पए कृपा लगो बिंद गुसाई, मेघ बसे सबने

जिसका साथ सते फल पाया का कृपा प्रभ संग मिलनाया आमर जा रहे वड भागी नानक पूर्णिया साजिया माझ महला पंजमा मी पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया क्लेश।

तव मेघ पठाया, जल थल मयल दै दिस वरसाया, शांत पई बूझी सब तृष्णा, नंद पया सब ठाई जियो, दुख सुख दाता दुख भंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा, अपने की

पंजवा सबे सुख पए प्रभ टूठे गुरपुरे ते के चरण मन उठे सह समाद लगी लेवे अंतर सो रस सोई जाने जिया।

अंचला ऐसा वशिष्ठ तराई अपना नाम आप जबाई गुर बोई तपाया कृपा ते नानक तुर संजोगा जियो माज महला पंजवां सोई।

बिन परमेश्वर सगले मुठाए। संजना गीत उड़त बाचे नाम सचे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइए जिस मत वर ने चल पाइए। नानक प्रभु दे अला तेरा किता सहना। राग माज अष्टपदियां मल्ला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसादा।

ना को मेरा हो किस केरा, हुकम पछाणे सो हर गुण, ना सा को साचा ठाकुर ते पण मेरा होमे कर का जाए कनेरी कर अवगण पछो तावण्या, हुकम पछाणे सो हर गुण वकाणे गुर के शब्द नाम निशाणे।

तायो मन भिन्ना कृष्णा तज सह सुख पाया एको मन वसावणिया हो वारी जियो वारी एक सौ चितला बणिया गुरमति मैं करत कर आया सच्चे रंग रंगा बणिया राहो ये जग भुला ते आप भुलाया एक विसार दूजे लोभाया अन्य सदा फिरे प्रभु भ्रम भुला बिना वे दुख पावणिया जो रंग राते कर विधाते गुर सेवाते जुग चारे जाते।

कमाए। सतगुर सेव से धनवंते तिवते नाम समा मणिया, पे पाए सी घर बनाए, गुर प्रसादी महल घर पाए।

मोए जग सुता नाम सार अंत बिगुता जिस दे सुता सो जगाए गुर मत सो जी पावण्या आपियो पिए सो परम गवाए गुर प्रसाद मुक्त गत पाए भक्ति रता सदा वैरागी आप मार मिलवण्या आप पाए धंधे लाए लख चौरासी रक आप अपड़ाए नानक नाम त्याए सच राते ज्योत पावे सो कार कमावण्या माज महला तेजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर के शब्द परख परखाया जे सच पले सच वखाने सच कसवटी लावण्या हो वारी जियो वारी गुर की बाणी मन वसावण्या अंजन मान रंजन पाया ज्योति ज्योत मिलावण्या राव इस काय अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अत अगम अपारा गुरमुख वे सोई पाए आपे बख्श मिला मणिया मेरा ठाकुर सच दिड़ाए गुर प्रसादी सच चित लाए सचो सच वरते सबनी थाई सचे सच समावण्या बे परवा सच मेरा प्यारा गिलब की अवगुण काटन हारा प्रेम पीसरा त्याई है पे पाए भगत देड़ा मणिया तेरी भगती जे सच्चे भावे आपे दे ना पछो ताए सब ना जिया का एक दाता शब्दे मार जीवा मणिया हाथ तुद बाजो मैं कोई नाही हाथ दे सेवी ते तुद सलाई आपे मेलो प्रभ साचे पूरे कर्म सोपा मणिया मैं होर ना कोई तुदे जिहा तेरी नजरी सिज दिया अन्न सास माले हर रखे गुरमुख सहज समावण्या तुद जेवड़ मैं होर ना कोई तुद आपे सिजे आपे गोई तू आपे ही घड़ भन्न सवारे।

जिन सच जाता सो सहज समावे, गुरम करनी सच्चे सेवे सचे जाए समावणिया। सच्चे बाजो को अवर ना दुआ, दूजे लग जग खप खमुआ, गुरमुख होवे सो एको।

समय आपरिया भरपूर नानक आपे आप वरते गुरम सोजी पावण्या माझ महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरम बिरले किन्ने चख डिटी अंतर प्रगास मारस पीवे दस सच्चे शब्द वजा।

फिर विष्ठा माए पचा मणिया मुक्ते सेवे मुक्ता हो वह होमे ममता शब्दे खोवे आंदिन हर जियो सच्चा सेवी पूरे भाग गुरु पावणिया पे बख्शे मेल मिलाए पूरे गुर ते नाम निध पाए सच्चे नाम सदा मन

पाए हर स्यों सहज समा मणे आओ पूर्व लिखिया सो कर्म कुमाया सतगुरु सिरसा सुख पाया बिन भागा गुर पाइये नाही शब्दे मेल मिलावणिया गुरम कल पतरे संसार है गुर के तकिए नाम अंधारे गुरमुख जोर करे क्या तिसनो आपे खप रुख पावणिया मन मुखी अंधे सुध न काई आत्म घाती है जगत कसाई निंदा कर कर बो भार उठावे बिन मजूरी भार पहुंचावणिया ए जगवाड़ी मेरा प्रभ माली सस वाले को नाही खाली जेही वासना पाए तेही वरते वास वास जनावणिया।

नामन वसाए। हमें मेरा सब दुख गवाए, अमृत बाणसा सलाहे, अमृत अमृत अमृत अमृत पावणिया वारी जियो वारी। अमृत बाणी मन वसावणिया, अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ते आवणिया। रहाओ अमृत बोले सदा मुख वेणी, अमृत वेखे परखे सदा नैनी। अमृत कथा रहे कहे सदा दिन राती, अवरा साख सुनावणिया। अमृत रंग रता लिवलाए,

तिसका हुक्म मेट न सके कोई। हुक्मे वरते अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पिया मणिया। अजब कम करते हर केरे मन भुला जांदा फेराए। अमृत बाणी सोचित लाई, अमृत शब्द बजा मणिया। खोटे करे तो दे आप उपाय।

भंडारा। बिन सतगुर सेवे कोई ना पावे, गुर कृपा ते पावणिया। सतगुर सेवे सो जन सोहे, अमृत नाम अंतर मन मोहे। अमृत मंथन बाणी रत्ता, अमृत सह सुना मणिया। मन भोला दूजे पाए खोए, नाम न लेवे मरे बिख खाए। अंधिसदा बिष्टा मैं वासा, बिन सेवा जन्म गवावणिया। अमृत पिवे सुनो आप आए, गुर प्रसादी सहज लिवलाए।

सब एका ज्योत जाने जे कोई सतगुरु सेविए प्रगट होई गोत प्रगट वरते सब ताई ज्योति ज्योत मिला वण्या तृष्णागन जले संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर म जन्मे पत गवाए अपने वृथा जन्म गवावण्या गुर का शब्द को

गुर के शब्द सदरे समाए सच लाए सब घट अंतरा सचो सच सुहावणिया सच सलाए सा हजूरा गुर के शब्द रहा भरपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सचे ही सुख पावणिया सच मन अंदर।

तुझे पाए दुख पावणिया, जैसे अंतर पीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वासा च संजम जुगता, गुर के शब्द सदा हर ध्याए, हाँ भगत हर पावणिया, गुरमा भगत जुग चारे होई, और भगत न पावे कोई, नानक नाम गुर भगती पाईए, गुर चरणी च दिल नावणिया, माझ महला तीजा सच्चा सेवी, सच सलाई सच्चे नाए दो कब ही नाही, सुखदाता सेवन सुख पाइन, गुरमत मन वसावणिया, हाँ वारी जियो वारी, सुख सहज समाद।

दरबारे गुर के शब्द नाम समारे, नाम समारे सदानंद रे दिन राती, गुण के गुणी समावणिया, हो वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावणिया। हर जियो सच्चा ऊंचो ऊंचा होमे मार मिलावणिया, हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसे मिलाई। गुर शब्द मिले से विछड़ नाई, सजे सच समावणिया, तुझ ते बार कछ न होए, तू कर कर वेखे जाने सोए, आपे करे कराए करता, गुरमते आ मिलावणिया। कामण गुणवंती हर पाए, पहे पाए शिगार बनाए, सतगुर सेवसा सुहागण सच उपदेश समावणिया। शब्द विसार तिन्ना ठौर न ठाओ, प्रम पुले जो सुन्ये कर काओ, हलत पल जितनी दो में गवाए, दुखे दुख विहावणिया। लिख दिया कागद मस्क होई, दूजे पाए सुख पावे ना कोई, कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे, जल जावे कूड़ चित लावणिया। गुरम

पर बैठा वेखे गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखाए नानक ना मिले वड्याई पूरे गुर ते पावणिया माज महला तीजा आत्म राम प्रगास गुर ते होवे होमे मैं लगी गुर शब्दी खोवे।

गावे सदा निर्मल शब्दे भक्त करावण्या। बाज गुरु है अंध अंधारा, जमकाल गठे करे पुकारा। अंदर रोगी बिष्टा के कीड़े, बिष्टा में दुख पावण्या। गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय बूठा आपे आए। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावण्या। माज मल्ला तीजा एका जो जोत है सरीना, शब्द दिखाए सतगुरु पूरा। आपे फरकी तोन घाटे अंतर, आपे बंत बनावण्या। हो वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावण्या। वाहिगुरु को सहज

राव गुर आपे गुर दाता कर्म विधाता सेव सेवे गुरमुख हर जाता अमृत नास दा जन सोहै गुरमत हरस पावणिया इस गुफा में एक थान सुहाया पूरे गुर हमें परम चुकाया अंधे नाम सलांद रंग राते गुर कृपा ते पावणिया गुर के शब्द गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसे मरारे हर गुण।

था, आज पुर गया परंपरा पे आपे था पे था भूथा पे समय वरते को सोई गुरमुख सो बापा मणिया हो वारी जियो वारी निरंकार नाम ते मणिया जिस रूप ना रेखिया घट घट देखिया गुरमुख लख लखावणिया राव तू दया कृपा पब सोई तुद बिन दो जावर ना कोई गुर प्रसाद करे नाम देवे नामे नाम समावणिया तू आपे सच्चा सृजन आरा भक्ति परे तेरे भंडारा गुरमुख नाम मिले मन भीजे सहज समाद लगावणिया आंदन गुण गावा प्रभ तेरे तसलाई प्रीतम मेरे तुद बिन अवर ना कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया अगम गोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करे तू ले मिलाई पूरे गुर के शब्द ते आईए शब्द सेव सुख पावणिया रसना गुणमती गुण गावे नाम सलाह सच्चे पावे गुरम सदारे रंग राती में सच्चे सब पावणिया मन मु कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लो महा गुब्बारा फिर आवण जावणिया आपे करता दे वड़ियाई जिन को आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पो पंजन गुर शब्दी सुख पावणिया माज मल्ला पंजमा घर पहला अंतर लख न जाई लख्या नाम तले गुजर रखिया गमोच सब ते ऊंचा गुर के शब्द लखावणिया हां वारी जियो वारी कल मैं नाम सुनावणिया संत प्यारे सच्चे तारे वड़भागी दर्शन पावणिया राव साधिक सिद्ध जिसे को फिरदा है ब्रह्म इंद्र त्यावन हिरदे कोट ते तीसा खोजे ताको गुर मिल हिरदे गावणिया आठ पैत दे जापे पमना धरती सेव पायक चरना खानी बाणी सर्व निवासी सबना के मन पावणिया साचा साहिब गुरमुख जापे पूरे गुर के शब्द सिं जापे जिन पिया से देवता से सच्चे सच अगावणिया तिस घर सहजा सोई सहेला आनंद विनोद करे सदकेला सो तनवंता सो बड़साहा जो गुर चरणी मन लावणिया पहलो दे के रिज समाया पहलो दे के रिज संभा पिछो दे ते जंतु पा तो जेवड़ा दाता वरना स्वामी लवे ना कोई लावण्या जिस तू टुटा सो तुत्याए साजना का मंत्र कुमाए आप तरे सगले कुल तारे तिस दर के ठाक ना पावण्या तू बड़ा तू ऊंचो ऊंचा तू बेंत अत मुचो मुचा कुर्बानी तेरे वन्या नानक दास सावण्या माज मल्ला पंजमा कौन सु मुक्ता।

कौन बे मुखिया, केन बिद मिलिए केन बिद बिछड़े, बिद कौन प्रगटाए जिया, कौन सु अखर जित धावत रहता, कौन उपदेशित दुख सुख सम सहता, कौन सु चाल जित पार ममत आए, केन बिद कीर्तन गाए जिया, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता, धन गहरी उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जिया, हमे बांधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख ने कर्मा, गुरमुख करे सो सुपाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख बेमुखिया, गुरमुख मिलिए मनमुख बिछड़े, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जित धावत रहता, गुरमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरमुख चाल जित पार मत आए, गुरमुख कीर्तन गाए जिया, सगली बणत बनाई आपे आपे करे कराए तापे, एक से होयो अनंता, नानक एक समाए समाए।

साध के सगल मनोरथ पूरा घट घट एक वर्तदा जल थल महल पूरा पाप सान सेवे आप इत संतन की तुरे सब चढ़ाई खसम आप हर जप पही ठरूरा करते किया तपाव सो दुष्ट मुए हुए मूरे नानक रता सच नाए हर वेखे सदा हजूरा बारह माह माज महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मिलो राम चार कुंट दस भ्रमे।

हर मेलो स्वामी संग प्रभु जिसका निश्चल धाम चेत गोबिंद आराधिए होए आनंद घना संजना मिल पाई रसाना बना जिन पाया प्रभु अपना आए ते गणा एक खिन तिसमे जीवना बिरथा जन्म जना जल तल मैय पूरिया रविया विच बना सो प्रचित न आवे कितरा दुख गणा जिन राव्या सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा बेसाख धीरन क्यों वाडिया जिन्ना प्रेम विश हर साजन पुरख विसार के लगी माया तो पुत्र कलतर ना संगत ना हर अवनासी।

रंग सबे नारायण जेते मन पावाना, जो हर लोड़े सो करे सोई जी कराना, जो प्रभु किते अपने से ही कहिए ताना, अपन लिया जे मिले बिछड़ क्यों रवाना, साधु संग प्रापते नानक रंग मनाना, हा जेड़ रंगीला तिस तनी जिसके भाग मथन, असार्थ पंदा तिस लगे हर नाव ना जिन्ना पास, जग जीवन पुरख ते आके मान संधि आस, दुए भाई भी गुचिए गल पैसो जम की फास, जेहा बीजे सोलने मथे जो लिख्यास, रेण विहानी पछतानी और चली गई निराश, जिनको साधु पेटिए सो

सारसो अंदाज दिस लगे जिस मन हर चरण निवास। सावन सरसी कामणी चरण कमल सो प्यार, मंत्र रत्ता सच रंग एको नाम आधार। बिख्या रंकुड़ा बिया दिस शबे शारा, हरे अमृत बूंद सुहावनी में साधु पीवनार। बेंतन प्रभ संग मोलिया समर्थ पुरख अपार, हर मिलने नु मन लोचदा करम मिलावन हार। जिन सखिए प्रभ पाया उस दिन के साध बलिहार। नानक जी मया कर शब्द स्वर्ण हार, सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम रहार। भादोए भरम भुलाणिया दूजे लगा हेता, लख सिंगार बनाया काज नहीं कहता। जित दिन दे बिन ससी तित वेले कैसन प्रेता, पकड़ चलाए न दूत जाम किसे न देनी पेता। छाड़ खलो तेखने माहे जिस लगा हेता, हाथ मरोड़े तन कपे से हो आसेत। जे अभी जे सोलने कर्म संदरा केता, नान प्रभ शरणागति चरण बोझ प्रभ देता। से पा दो नरक न पाइए गुर।

हो जा, कत्तक होवे साध संग बिनसे सबे सो जा। मगर मास हंदिया फिर संग बैठड़िया, तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब में लड़िया। तन मन मोलिया राम स्यों संग साध से लड़िया, साजना के साजना ते बारी से रहन अके लड़िया। तेन दुख ना कबू उतरे से जम के वस पड़िया, जिनी राव्या प्रव्य अपना से दिसन नित खड़िया। रतन जवेर लाल हर कंठ तिना जड़िया, नानक बाचे तूर तिन प्रव सरनी दर पड़िया। मगर प्रव आराधना बो न जनमणिया, पोत घर न व्यापई कंठ मिलिया हर नाव। मन बेद्या चरनार बिंद रसन लगड़ा साओ, ओट गोबिंद गोपाराय सेवा स्वामी लाओ। भिख्या पो न सकई मिल साधु गुण गाओ।

संसार सागते रखियन बहु न जन्मे ताए, जेवा एक नेक गुण तरे नानक चरणी पाए। फल गुण नित सलाहिए जिसनो तिल नात माए, जिन जन नाम ते आया तिनके कासरे। हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे, सर्व सुखा निद चरण हर भवजल विखम तरे। पे भगत तिन पाया विख्या नाहीं जरे, कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच परे। पारम प्रभ सेम दे मन अंदर एक तरे, मां दिवस मूर्त भले जिसको नदर करे। नानक मंगे दान दस दान कृपा करो हरे। माज मल्ला पंजमा दिन रहन एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना सिमरी दिन सब रहन। आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैन, जन्म जन्म का विछड़िया हर मेले सज्जन सैन। जो जी हर के विछड़े से सुख ना बसन पैन।

सबना का आधार। ससरे पे ये तिस कंत की बड़ा जिसवर परवार। ऊंचा गमा गाद बोध कश अंत न पारा वार सेवा। साथ इस भाव सी संता की हो इशार। दीना ना दयाल देव पति तू उदाहरण हार। आज गादी रखदा सच नाम करतार। कीमत कोई ना जाने को ना नाही तुलन हार। मंत ने अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार।

कीर्तन जी अंदा गुर प्रसाद गुर शब्द ही आराधिए जपिए निर्मल मनता की मत कह न जाइए परमेश्वर बेअंता जिस मन वसे न रहने।

जे समझ आई है फटिए सिमत पाठ अंधा चन रखिए दीवे भले पचास सोने चौने सोना पाइए चुन चुन खावे घास लोहा माने पाइए टहे ना हो एक पास नानक मूर्ख वगुण बोले सदा विनाश महला पहला केहा कंचा टूटे सार अग्नि गंड पाए लोहार गौरी सेती टूटे पतार पुती गंड पवे संसार।

बोल बेदा गांड बोले सच कोए, मोया गांड ने की साथ होए, ते गांड वरते संसार मूर्ख गांड पवे मोह मारा। नानक आखे विचार सिरती गांड पवे दरबार पौड़ी, आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एको टेक खरे आपे परखण हारा। खरे खजाने पाइए खोटे सटिए बार बार, खोटे सच्ची दर गै सुटिया, किस आगे करे पुकार, सतगुर पीछे भज पवे हा करनी सार। सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द।

ना शब्द दीप न जल, अन पवन तेरे ना कोई, एक तू ही एक तू ही मल्ला पहला, ना रिजक दस्त आकसे, हम रा एक आस वसाए, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही एक तू ही मल्ला पहला, प्रंदे नागिरा जर दरखत आप आस कर, दिहंत सुई एक तो ही मल्ला पहला, नानक लीला लिखिया सोए मिट न सके कोए, कला तरे रे सुई एक तू ही पौड़ सच्चा, तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमति आप गवाए सच पछाणिया, सा तेरा दरबार शब्द निशाणिया, सच्चा शब्द विचार सच मणिया, मन मसदा कुड़ियार परम पुलाणिया, विस्ता अंदर वा साधना जानिया, बिना वे दुख पाए आवण जानिया, नानक पार के आप जिन खोटा खरा पछाणिया, सर्व कमाला पहला, सिया बाजा चरगा कोया इना खवाले का खान तेना मास

रससिया हरियासदा पके कर्म ध्यान पत के साधक दलय दाना के सरदान महला पहला सोने का बिरख पत परवाला फूल जवेहर लाल तित पतन लगे मुख पाखिता हृदय दे निहाल नान कर्म होवे मुख मस्तक लिखिया होवे लेखा हर्ष तीर्थ गुर की चरणी पूजे सदा विषय का हंस हित लोभ।